हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है, दैट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। यहाँ एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना। अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है। सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है। सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं। टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द। टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि। कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग। अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है। मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है। व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी, दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी, मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना, उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है
feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. लगातार

0: बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए, किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं, काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन में सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: നാം കേട്ടത് ലംഹെ സ്പോൺസർഡ് പരിപാടി. നമുക്കിനി ചിത്രപാടിയൊരു ഗാനം കേൾക്കാം. ചിത്രം മഴമുകിൽ പോലെ.

फिर मिलेंगे ऐसे ही सुरीले नगमों के साथ। मट्टुर गजल रावल उन्नी के मरे मैं रूबी बाबू सभी श्रोताओं को शुभ रात्रि।

फिल्म बाजार की ये गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज में। बशर नवाज की लिखी ये गजल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें, सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द, इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

सजना इस एल्बम का गीत है आवाज श्वेता शेट्टी की। यशपाल तनवर के बोल हैं, डीजे मूडी का संगीत।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम

विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग। बेगम अख्तर की आवाज में ये दादरा।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वादा रहा। इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज, गीत और संगीत बाबू मान के, और यही है रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश श्रोताओं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और आपको याद दिला दें, आज जानी मानी अदाकारा शबाना आजमी का जन्मदिन है। तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं। सुनिए अगला गीत।

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकारा हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना। संगीतकार राहुल देवबर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में। कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जंबो जेठ जंबो जेठ लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेठ सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है कि ये इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत लिखते हैं, उसमें से आपको शब्द और गाने ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए हम इबारत आपको पढ़ के सुना देते हैं आज की, जिन्होंने पढ़ी नहीं है इबारत। उसने डायरी के एक पन्ने पर कोई अफसाना लिखा था, खामोश अफसाना। मेरी निगाहें यानी नजरों ने चुपके से उसे पढ़ लिया था, लेकिन

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया फासले और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली, किससे कही। और

आपने कब समझी आंखों की भाषा किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है। बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। श्यामल रातों में जलने वाले दीपक की लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा की थरथराहट से, मोबाइल की हल्की कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज नहीं, एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता, वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम, कहानी, कविता, या अपनी दिनचर्या, या फिर अपनी कोई दुखद बात, या कोई बहुत खुशगवार लम्हा, बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए तो हम इंतजार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं पर अपनी पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक में नोट जरूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुजबानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो जरा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे हैं।

नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा, लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने, खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना, बिछड़ने की इस छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद, मेरा नाम लिखा है। धन्यवाद तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए, और जो गाने हैं, शब्द हैं, शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब जरा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज। मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नजर आया था, लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते हैं आप में से कितने लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं। डायरी वाली बात, या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहां, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

0: चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है।
1: भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाजें हैं। और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत हैं, प्रेम है, प्रेम पिया, और कागज था मन मेरा, मेरे महबूब वगैरह वगैरह गानों की लंबी फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था, आपकी नजरों ने समझा, अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि

चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है। तो ये जो चुप की भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो जरा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं? बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी जिंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नजरें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आंखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहां पर हम चुप रहकर जवाब देने की और आंखों की भाषा की नजरों की बात, तो जरा सुनिए ये गाना और बूझिए फिल्म का नाम और बताइए किसकी आवाज में है ये गाना।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गजब के बोल थे, जरूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आंखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा ये भी, आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोट पैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन मोबाइल का नोट पैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, जरा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें ही बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में है, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाजा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज जरूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था, लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहां ध्यातव्य है कि देशो ही द्विविधा, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है, जिसके निगहबानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई, ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है, कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज एक गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए, आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें। अगली फिल्म का नाम

0: गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम आपको बूझना है।
1: जुल्फों में लेके काली रात चले

शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग ही, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहां जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके डर से आप बहुत सारी पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तिरछे नैनों वाली बीबी भोली भाली, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के सोने की घड़ी फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते हैं, बल्कि लालित्य जो होता है वो सुंदरता को निखारता है। शब्दों का लालित्य, भाषा का लालित्य, भाव का लालित्य। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मोबाइल नहीं था तब सखी सहेली में जो गाने बजते थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे और फिल्म के नाम के साथ गाना हम नोटबुक पे नोट कर लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मिला तो, पर शायद हकीकत में नहीं बस ख्वाबों में, पर क्या उसे मिलना कहेंगे। कई बार ख्वाबों में मिलना भी तो मिलना होता है, ख्वाब कई बार हकीकत में ढल जाते हैं और कई बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूं, चुप चुप खड़े हो, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया, आंखों आंखों में बात, जरा नजरों से कह दो वो शाम कुछ अजीब थी। अब बस बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी, कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी। और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसा लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसा लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की, आंखों की बातें और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर, आपको पूछना है कौन है हीरो, कौन हीरोइन।

गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार, हीरो हीरोइन का नाम?

घर फिल्म का गाना था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन। बिल्कुल सही जवाब आया है। और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काट कर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काट कर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का, फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली का संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली

शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को। जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी। जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आंखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आंखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्पररी बेसिस पर आई थी। बला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चपल हिरणी सी थी और वो आंखें बोलती आंखें थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे। एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन की परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहती हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काटकर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिखकर इसकी कटिंग करके चिपका लेती, यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल गई तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़कर खाना बनाओगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया, और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें

एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे। और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था, जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताजा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको बूझना है। हीरो हीरोइन का नाम

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब, बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला था। बताइए, आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते थे, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने

क्योंकि जवाब देते हैं, ये भी बताइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी भावनाओं को कागज पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पलभर के लिए जो दर्द छलका था, उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर न आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़े और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम, और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की ये आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बुझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले, हाय हाय

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
1: सोना कितना सोना है, सोने कैसा तेरा मन।
0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
0: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार

0: പ്രേം കഥ.
1: മൈ നിക്ലാ ഓ ഗഡ്ലേകേ
0: പിഞ്ചർ दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे.

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना? जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहाँ होता है वहाँ टिकता ही कहाँ है। या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं।

0: हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते हैं कहाँ से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी है मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया,
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती हमारी पहली पहली सखी जिनका कॉल लगा है।
1: हो रही हूं।
0: तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद है, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे ही जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे घर पर रहती हूँ, तो शेर व शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेर व शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओह क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आगे खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है खूबसूरत।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं। आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: ये जो

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से।
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: हाँ, लेकर आए हैं ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना, खूब अच्छा। सब क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी से मोदक का भोग लगाया।
0: अरे वाह। और बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में आप? और गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी हम प्रार्थना करते हैं। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: देवा और देवा, गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ,
0: बहुत बहुत प्यारा सा गीत है ये तो। बहुत अच्छा सा ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं।

0: ഹലോ സഹേലി.
1: ഹലോ സഹേലി ജി, നമസ്തേ.
0: നമസ്തേ. തോ ബതായിയേ ആപ് ജരാ പഹലേ അപ്നാ നാം ഔർ അപ്നേ ശഹർ കാ നാം.
1: ജി, മേരാ നാം കൽപനാ മനോര ഹൈ ഔർ മൈ ഭുലിഗാവ് സേ ബോൾ രഹി ഹൂം.
0: അച്ഛാ,
1: വാഷിം സേ.
0: വാഷിം സേ തോ ബഹുത് അച്ഛാ ലഗ് രഹാ ആപ് സേ ബാത് കർകേ. ആപ് ബതായിയേ ആപ് ക്യാ കർതി ഹൈ കൽപനാ?
1: ജി, മൈ അംഗൻവാടി മദദനീസ് ഹൂം.
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात. अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में वो कौन सा है?
1: ये वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब मैं रेडियो पे सुनती हूँ.
0: अच्छा, ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती है ना?
1: हाँ.
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको?
1: मुझे बच्चों को पढ़ाना और ड्राइंग करना.
0: अच्छा, आप आंगनवाड़ी में काम करती तो आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है.
0: अच्छा, तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है. आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और हाँ, आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए?
1: कारों का चमकता चेहरा हो.
0: तो ये गीत
1: हंसने की वादी हो.
0: अच्छा, तो ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: हैं? जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, हम भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए आप जो करती हैं, आपका ये जो बुटीक चलाती हैं तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं? सलवार
1: जी मैं लेडीज। हाँ मैम जी मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के, है ना? और सलवार सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो वगैरह काफी चल रहे हैं ना?
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर कि सबसे ज्यादा कौन सा?
1: मैम इस समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड है ना कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप?
1: हाँ बहुत अच्छी सी ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी से लेडी से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही है।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही है। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम परजाना सखी से बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ये दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है।
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम हाँ। से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकती है ना।
1: हाँ, अब बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6 महीना चालू है।
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई अब, है ना?
1: हाँ, बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से या बुरहानपुर से।
0: आप एक सास के रोल में आ गई हैं।
1: चंदन का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना।
0: हाँ, बहुत अच्छा।
1: और बहू है तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, मुझे भी सुनना है।
1: क्योंकि मेरी तो... बेटी है ना, उनको बहुत पसंद है।
0: अच्छा, अरे
1: वो मोबाइल में रखेगी ना, वही गाना रखेगी, उनके पापा के लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: है? अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी आपकी। तो चलिए, आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे हैं, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली हेलो सहेली भी पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे विविध भारती, जैसे हमें सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए। नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा प्रमिला खन्ना जी।
1: जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है।
0: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
0: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना।
1: जी
0: सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तब मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे सोनी मजवाल फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हॅलो सहेली.
1: अरे मॅम नमस्कार, मी संभाजीनगर बात करते, निर्मलाकर आहे.
0: अच्छा अच्छा, आप छत्रपती संभाजी नगर से बोल रही हैं निर्मला जी.
1: गाणी बहुत अच्छा अच्छे लगते हैं.
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: बहुत अच्छे लगते हैं.
0: तो जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब पसंद है ना आपको? तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गणपति जी का कौन सा गाना सुनाए?
0: तो ठीक है, ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चेल्लारे बोल रही हूँ।
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
1: हाँ।
0: तो बताइए, आप पढ़ती हैं?
1: हाँ।
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: सिक्स में है अभी आप? छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती हैं, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है।
0: सखी सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ।
0: अच्छा, यानी कि साची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना?
1: हाँ।
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ।
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी?
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ साची के लिए खास तौर पर ये गीत, अच्छा लगेगा साची को।

0: और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी,
1: अच्छा,
0: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे, सखी सहेली है हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं,
1: या
0: पिटारा में जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
1: तो
0: अभी भी सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर।
1: हाँ नहीं, बच्चे छोटे हैं, आपने बताया 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना
0: बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है इतने सालों से, मेरे ख्याल से 20 सालों से,
1: अरे
0: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम में।
1: क्या बात कर रही
0: हैं? एक बार विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
1: अच्छा, यानी कि आपकी चलो बात तो ही, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने सोचिए लगाया है
0: फोन।
1: नहीं, सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी गाने के बोल है इस मोड से जाते हैं, कुछ
1: है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड से जाते हैं, इस मोड से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें, हमारी मुलाकात हो जाए।
0: हाँ आप आइए ना कश्मीर,
1: बिल्कुल बिल्कुल कभी
0: आप आइए और सिर्फ देख रहे कितनी सुंदर जगह है, हर मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
1: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा ये गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है।

0: आज की हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002466 2 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002466 2 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867 0288 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 2867 0288 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विद भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4